नानक ते मुगुजुले केती चुती नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

करे जिसनो आप खराई सोए। सतगुर विच नाम न जाम है कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिया तिन सचि सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछने सच समावे सोए। महला तीजा सब गोति जो भगवंते जाने गुर प्रसादी आप पछाने। दावत राखे एक ठिकाना आने